0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, डर मानव के जीवन की वह मनोभावना है जिसके द्वारा हर कोई आतंकित रहता है। इस डर के कई रूप और कई कारण हो सकते हैं। हम में से हर किसी को मौत का डर भयभीत करता है। किसी को अपने प्रिय जनों को खोने का डर है। कोई अपने धन, अपने व्यवसाय या कोई कीमती वस्तु को खोने से आतंकित है, तो वहीं कई हैं जो अपनी इज्जत को लेकर, तो कितने ही ऐसे हैं जो अपने इस सोच से भयभीत हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे इत्यादि इत्यादि। अपने में व्याप्त इन डरों के कारण आज कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में असक्षम हैं। इस भांति मानव के जीवन में विभिन्न डरों और भयों का होना जिंदगी को एक तरह से कुंठित बना देती है और डर के कारण अपने जीवन को खुलकर ना जी पाना व्यक्तियों के जीवन में एक तरह का मलाल उत्पन्न करता है कि काश मैं डर से मुक्त और अधिक स्वतंत्र और एक बेहतर जीवन जिया होता। श्रोताओं, वर्ष के 12वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम डर की विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि वह कौन सी बात है जो हमारे मन और दिल में डर उत्पन्न करती है। उस डर के कारण हम अपने जीवन को किस रूप में संचालित करते हैं। क्या हम में व्याप्त डर हमें दब्बू बना देता है जिससे हम जीवन की सच्ची और न्यायपूर्ण बातों को घोषित करने में झिझक कर रह जाते हैं।
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उसमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में अनचाहे डर के मनोभावों से मुक्त होने में मदद करें जिससे हम अपने जीवन के महत्व को जान सकें और उसे निडरता में दूसरों के लिए जी सकें जिसके द्वारा ईश्वरीय नाम की महिमा और स्तुति होती है। श्रोताओं, मानव के जीवन में डर का एक मुख्य कारण शारीरिक पीड़ा है जो हमें अनायास ही भयभीत कर देता है। इस शारीरिक दुख की परिकल्पना के प्रभाव को हम यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी पाते हैं जो उन्हें थोड़े समय के लिए विचलित करता है। गेतसेमानी बारी में यीशु की पीड़ा हमें उनके मनोवैज्ञानिक रूप में प्रभावित होने की बात बयां करती है, जहां हम उनके पसीने को लोहू की बूंदों में परिणत पाते हैं। लेकिन जीवन की ऐसी परिस्थिति में वे अपनी सारी मनोभावनाओं को पिता की इच्छा अनुरूप घटित होने को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के द्वेषपूर्ण विचारों का जिक्र करता है जो नबी को मार डालने के फिराक में है, क्योंकि वह सच्चाई घोषित करते हुए उन्हें चुनौती प्रदान करता है। लेकिन नबी अपने शत्रुओं के व्यवहार और उनके छल कपट से तनिक भी विचलित और भयभीत नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर में मजबूती से बना है। ईश्वर में अपने घोर विश्वास के कारण वह ईश्वर को अपनी ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़ता हुआ पाता है। ईश्वर अपने विश्वासी भक्तों के लिए ऐसा ही करते हैं और ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वालों को किसी बात का भय और डर नहीं लगता है। श्रोताओं, आज का पहला पाठ दुनिया में पाप की स्थिति को व्यक्त करता है, जहां अच्छाई, सच्चाई और न्याय की बातें हमेशा से दबा और कुचल दी जाती हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में हम सृष्टि में पाप के प्रवेश के बारे में सुनते हैं। एक आदम के आज्ञा भंग द्वारा दुनिया में मृत्यु आई। प्रथम आदम के पाप के कारण हम दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को पाप के प्रभाव में पाते हैं। पाप के कारण आदम ने अपने को झाड़ी में छुपा लिया था। अतः भय का एक मुख्य कारण हमारे लिए पाप और पाप करने की प्रवृत्ति है। इस भांति मानव में डर को हम प्रथम आदम में सृष्टि के शुरू से ही पाते हैं, जो पाप के कारण उत्पन्न हुआ है। पाप और गलत कार्यों के कारण हम स्वयं अपने को डर की स्थिति में पाते हैं, क्योंकि यह हम में एक शंका अविश्वास उत्पन्न करती है कि हमारा क्या होगा। वही पुत्र ईश्वर दूसरे आदम में पिता हमें पापों से क्षमा करते और हमें शंका अविश्वास तथा भय से मुक्त करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि हमें नहीं डरने को कहा जाता है। यीशु हमें शरीर को चोट पहुंचाने वालों से नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाने वाले से डरने को कहते हैं। अर्थात वे हमें पाप से डरने को कहते हैं, जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करता है। आज के प्रभु वचन हमें अपने मानवीय जीवन के मूल्य को देखने और पहचानने का निमंत्रण देता है। सृष्टि में हम दुनिया की सारी चीजों, जीव जंतुओं से महान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया और जीवन दिया है। उन्होंने हमें जीवन देकर यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि वे हमारी चिंता और हमारी देखरेख करते हैं। श्रोताओं, अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में पिता ईश्वर ने हमारी सुधि ली है और वे सदैव हमारी देखरेख करते हैं। यह हमारे लिए उनका प्रेम है और इसके प्रत्युत्तर में हमें उन्हें स्वीकारने को कहा जाता है। ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ हमारे लिए उनके द्वारा दी गई संहिता और प्रेम के नियमों का अनुपालन करना है। ईश्वर के नियमों और आज्ञाओं का अनुपालन करना हमें जीवनदाता ईश्वर से संयुक्त करता है, जिसे हम अपने कार्यों, बातों, व्यवहार और आचरणों में व्यक्त करते हैं। हमारा ऐसा करना हमें निर्भय बनाता है, जहां हम अपने मानवीय जीवन को आनंद और शांति की परिपूर्णता में जीते हैं, जो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से विनय करें कि वे हमें विभिन्न तरह की शंकाओं और बेचैनियों से मुक्त करें, जो हम में डर के मनोभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे हम उनके संग अपनी एकता में स्वतंत्रता पूर्ण जीवन यापन कर सकें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। एक अध्ययन में पाया गया है कि सच्चाई, उद्देश्य एवं समुदाय की खोज के कारण कैथोलिक धर्म में दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका के 20 कैथोलिक धर्म प्रांतों में वयस्कों की ख्रिस्ती दीक्षा के ऑर्डर ओसिया में 2000 से अधिक प्रतिभागियों पर हुए एक नए राष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि कैथोलिक धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर उन युवाओं में जो सच्चाई, उद्देश्य और आध्यात्मिक गहराई की तलाश में हैं। 18 जून को शिकागो धर्म प्रांत ने 19 दूसरे धर्म प्रांतों के साथ मिलकर यह सर्वे प्रकाशित किया। इस सर्वे में फरवरी एवं मई 2026 के बीच ओसिया में हिस्सा लेने वाले 2127 लोगों के अनुभवों की जांच की गई। इसमें शामिल धर्म प्रांतों ने वयस्क विश्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिकॉर्ड स्तर पर हिस्सा लेने की बात कही। अध्ययन में पाया गया कि चर्च जाने वाले लोग मुख्य रूप से दो बड़े कारणों से प्रेरित होते हैं, अच्छाई, सच्चाई, मन की शांति, मकसद की खोज तथा कैथोलिक कलीसिया की धर्म विद्या, शिक्षाएं और 2000 साल पुरानी परंपरा के प्रति आकर्षण। जवाब देने वालों में से 28% ने कहा कि कैथोलिक धर्म की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जबकि दूसरे प्रोटेस्टेंट समुदाय के थे या कैथोलिक जो अपनी दीक्षा पूरी कर रहे थे। शोध में पाया गया कि आध्यात्मिक प्रेरणा राजनीतिक या सामाजिक बातों से कहीं अधिक

0: के बाद निरंतर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखकों के अनुसार निष्कर्षों से पता चलता है कि आज बहुत से लोग कैथोलिक कलीसिया से मुख्य रूप से पारिवारिक परंपरा या विवाह के माध्यम से नहीं, बल्कि अर्थ, सच्चाई और ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते की व्यक्तिगत खोज के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। हांगकांग और मकाओ के धर्मदक्षों ने रोम की अपनी अदलिमीना प्रेरित यात्रा के दौरान आभार, मिशनरी नवीनीकरण और सिनोडलिटी के जीवित अनुभव के बारे में बात की और पोप लियो 14वें एवं वैटिकन के विभागों के साथ अपनी मुलाकात को विश्वव्यापी कलीसिया के साथ गहरे जुड़ाव का पल बताया। उनकी ये बातें ऐसे समय में आईं जब दोनों धर्म प्रांत अपनी खास वर्षगांठ मना रहे हैं। मकाओ धर्म प्रांत अपनी स्थापना के 450 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है, वहीं हांगकांग अपने धर्म प्रांत की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: सिर्फ ईश्वर का प्यार ही हमें सच्चा और पूर्ण आनंद दे सकता है। संत पापा लियो 14वें ने यह बात अमेरिका राज्य ओहायो में स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें स्टूबेनविले ग्रीष्मकालीन युवा सम्मेलन को भेजे गए एक वीडियो संदेश में कहा। संत पापा ने उनका अभिवादन कर यह भी याद दिलाया कि इस साल संत फ्रांसिस की मौत की 800वीं सालगिरह है। यह देखते हुए कि यह सम्मेलन स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय आयोजन कर रही है, संत पापा ने कहा कि उन्हें लगता है कि आज के युवाओं के लिए संत फ्रांसिस का जो संदेश हो सकता है उस पर सोचना सही होगा, खासकर सच्ची शांति और पूर्ण आनंद के बारे में। संत पापा ने कहा कि अगर कोई 13वीं सदी में असीसी की सड़कों पर संत फ्रांसिस से मिलता तो वे लोगों को शांत और प्यार भरी मुस्कान के साथ देखकर कहते, पाचे एबेने, अर्थात शांति और सब अच्छा हो। संत पापा ने युवाओं को खुद से पूछने के लिए कहा, क्या मैं उन लोगों के लिए सच्ची शांति चाहता हूँ जो मेरे संपर्क में आते हैं। संत पापा ने कहा कि संत फ्रांसिस ने जिस खुशी की बात कही थी वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या स्क्रीन के सामने घंटों बिताने से नहीं मिलती। ऐसी गतिविधियां अक्सर मूल्यवान समय बर्बाद करती हैं, जिसका उपयोग प्रार्थना, सच्ची दोस्ती, पारिवारिक जीवन, विश्वास निर्माण और अध्ययन या खेल के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर का प्रेम ही मानव हृदय को सच्चे आनंद से भर सकता है। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको किसी काम के लिए बुला रहे हैं तो खुद को बंद ना करें और डर से पीछे ना हटें, बल्कि एक कदम आगे बढ़ें और प्रभु से कहें, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भेजिए। अंत में संत पापा ने प्रतिभागियों को एक सफल सम्मेलन की शुभकामनाएं देते हुए अपना संदेश समाप्त किया। और संत पापा लियो 14वें आज पाविया और संत अंजेलो लोदीजानो की प्रेरितिक दौरे पर हैं। वे दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए 3:45 बजे क्रोविनो में कुस रुग्बी फील्ड में उतरेंगे और तुरंत कार से नेशनल सेंटर फॉर अंकोलॉजिकल हाइड्रोथेरेपी अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां संत पापा अस्पताल के मैनेजरों, मेडिकल स्टाफ और इलाज कर रहे कुछ बच्चों के साथ उनके माता पिता से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कार से सीएलडी ओरो में संत पेत्रुस महागिरजाघर जाएंगे। वहां वे संत अगुस्टीन के अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के बाद धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और परमानेंट डीकनों से मिलकर उन्हें अपना संदेश देंगे। फिर महागिरजाघर से निकलकर संत पापा विक्टोरिया चौक में स्थानीय विश्वासियों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। फिर शाम को संत अंजेलो लोदीजानो के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे संत अंतोनी एबोट और संत फ्रांसिस्का काब्रिनी महागिरजाघर में धन्य संस्कार की आराधना करेंगे और वहां उपस्थित विश्वासियों को संत पापा अपना संदेश देंगे। उसके बाद संत पापा 7:45 बजे संत अंजेलो लोदीजानो से वाटिकन के लिए उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, डर मानव के जीवन की वह मनोभावना है जिसके द्वारा हर कोई आतंकित रहता है। इस डर के कई रूप और कई कारण हो सकते हैं। हम में से हर किसी को मौत का डर भयभीत करता है, किसी को अपने प्रिय जनों को खोने का डर है, कोई अपने धन, अपने व्यवसाय या कोई कीमती वस्तु को खोने से आतंकित है, तो वहीं कई हैं जो अपनी इज्जत को लेकर, तो कितने ही ऐसे हैं जो अपने इस सोच से भयभीत हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे इत्यादि इत्यादि। अपने में व्याप्त इन डरों के कारण आज कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में असक्षम हैं। इस भांति मानव के जीवन में विभिन्न डरों और भयों का होना जिंदगी को एक तरह से कुंठित बना देती है और डर के कारण अपने जीवन को खुलकर ना जी पाना व्यक्तियों के जीवन में एक तरह का मलाल उत्पन्न करता है कि काश मैं डर से मुक्त और अधिक स्वतंत्र और एक बेहतर जीवन जिया होता। श्रोताओं, वर्ष के 12वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम डर की विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि वह कौन सी बात है जो हमारे मन और दिल में डर उत्पन्न करती है। उस डर के कारण हम अपने जीवन को किस रूप में संचालित करते हैं। क्या हम में व्याप्त डर हमें दब्बू बना देता है जिससे हम जीवन की सच्ची और न्यायपूर्ण बातों को घोषित करने में झिझक कर रह जाते हैं।
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैयां नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उसमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत तेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में अनचाहे डर के मनोभावों से मुक्त होने में मदद करें जिससे हम अपने जीवन के महत्व को जान सकें और उसे निडरता में दूसरों के लिए जी सकें जिसके द्वारा ईश्वरीय नाम की महिमा और स्तुति होती है। श्रोताओं, मानव के जीवन में डर का एक मुख्य कारण शारीरिक पीड़ा है जो हमें अनायास ही भयभीत कर देता है। इस शारीरिक दुख की परिकल्पना के प्रभाव को हम यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी पाते हैं जो उन्हें थोड़े समय के लिए विचलित करता है। गेतसेमानी बारी में यीशु की पीड़ा हमें उनके मनोवैज्ञानिक रूप में प्रभावित होने की बात बयां करती है, जहां हम उनके पसीने को लोहू की बूंदों में परिणत पाते हैं। लेकिन जीवन की ऐसी परिस्थिति में वे अपनी सारी मनोभावनाओं को पिता की इच्छा अनुरूप घटित होने को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के द्वेषपूर्ण विचारों का जिक्र करता है जो नबी को मार डालने के फिराक में हैं, क्योंकि वह सच्चाई घोषित करते हुए उन्हें चुनौती प्रदान करता है। लेकिन नबी अपने शत्रुओं के व्यवहार और उनके छल कपट से तनिक भी विचलित और भयभीत नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर में मजबूती से बना है। ईश्वर में अपने घोर विश्वास के कारण वह ईश्वर को अपनी ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़ता हुआ पाता है। ईश्वर अपने विश्वासी भक्तों के लिए ऐसा ही करते हैं और ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वालों को किसी बात का भय और डर नहीं लगता है। श्रोताओं, आज का पहला पाठ दुनिया में पाप की स्थिति को व्यक्त करता है, जहां अच्छाई, सच्चाई और न्याय की बातें हमेशा से दबा और कुचल दी जाती हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में हम सृष्टि में पाप के प्रवेश के बारे में सुनते हैं। एक आदम के आज्ञा भंग द्वारा दुनिया में मृत्यु आई। प्रथम आदम के पाप के कारण हम दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को पाप के प्रभाव में पाते हैं। पाप के कारण आदम ने अपने को झाड़ी में छुपा लिया था। अतः भय का एक मुख्य कारण हमारे लिए पाप और पाप करने की प्रवृत्ति है। इस भांति मानव में डर को हम प्रथम आदम में सृष्टि के शुरू से ही पाते हैं, जो पाप के कारण उत्पन्न हुआ है। पाप और गलत कार्यों के कारण हम स्वयं अपने को डर की स्थिति में पाते हैं, क्योंकि यह हम में एक शंका अविश्वास उत्पन्न करती है कि हमारा क्या होगा। वही पुत्र ईश्वर दूसरे आदम में पिता हमें पापों से क्षमा करते और हमें शंका अविश्वास तथा भय से मुक्त करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि हमें नहीं डरने को कहा जाता है। यीशु हमें शरीर को चोट पहुंचाने वालों से नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाने वाले से डरने को कहते हैं। अर्थात वे हमें पाप से डरने को कहते हैं, जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करता है। आज के प्रभु वचन हमें अपने मानवीय जीवन के मूल्य को देखने और पहचानने का निमंत्रण देता है। सृष्टि में हम दुनिया की सारी चीजों, जीव जंतुओं से महान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया और जीवन दिया है। उन्होंने हमें जीवन देकर यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि वे हमारी चिंता और हमारी देखरेख करते हैं। श्रोताओं, अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में पिता ईश्वर ने हमारी सुधि ली है और वे सदैव हमारी देखरेख करते हैं। यह हमारे लिए उनका प्रेम है और इसके प्रत्युत्तर में हमें उन्हें स्वीकारने को कहा जाता है। ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ हमारे लिए उनके द्वारा दी गई संहिता और प्रेम के नियमों का अनुपालन करना है। ईश्वर के नियमों और आज्ञाओं का अनुपालन करना हमें जीवनदाता ईश्वर से संयुक्त करता है, जिसे हम अपने कार्यों, बातों, व्यवहार और आचरणों में व्यक्त करते हैं। हमारा ऐसा करना हमें निर्भय बनाता है, जहां हम अपने मानवीय जीवन को आनंद और शांति की परिपूर्णता में जीते हैं, जो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से विनय करें कि वे हमें विभिन्न तरह की शंकाओं और बेचैनियों से मुक्त करें, जो हम में डर के मनोभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे हम उनके संग अपनी एकता में स्वतंत्रता पूर्ण जीवन यापन कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। एक अध्ययन में पाया गया है कि सच्चाई, उद्देश्य एवं समुदाय की खोज के कारण कैथोलिक धर्म में दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका के 20 कैथोलिक धर्म प्रांतों में वयस्कों की ख्रिस्ती दीक्षा के ऑर्डर ओसिया में 2000 से अधिक प्रतिभागियों पर हुए एक नए राष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि कैथोलिक धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर उन युवाओं में जो सच्चाई, उद्देश्य और आध्यात्मिक गहराई की तलाश में हैं। 18 जून को शिकागो धर्म प्रांत ने 19 दूसरे धर्म प्रांतों के साथ मिलकर यह सर्वे प्रकाशित किया। इस सर्वे में फरवरी एवं मई 2026 के बीच ओसिया में हिस्सा लेने वाले 2127 लोगों के अनुभवों की जांच की गई। इसमें शामिल धर्म प्रांतों ने वयस्क विश्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिकॉर्ड स्तर पर हिस्सा लेने की बात कही। अध्ययन में पाया गया कि चर्च जाने वाले लोग मुख्य रूप से दो बड़े कारणों से प्रेरित होते हैं, अच्छाई, सच्चाई, मन की शांति, मकसद की खोज तथा कैथोलिक कलीसिया की धर्म विद्या, शिक्षाएं और 2000 साल पुरानी परंपरा के प्रति आकर्षण। जवाब देने वालों में से 28% ने कहा कि कैथोलिक धर्म की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जबकि दूसरे प्रोटेस्टेंट समुदाय के थे या कैथोलिक जो अपनी दीक्षा पूरी कर रहे थे। शोध में पाया गया कि आध्यात्मिक प्रेरणा राजनीतिक या सामाजिक बातों से कहीं अधिक थी। 77% ने अच्छाई में बढ़ने की बात बताई, 76% ने सच्चाई की गहरी समझ चाही और 72% ने मन की शांति की तलाश बताई। अध्ययन ने डिजिटल सुसमाचार प्रचार की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। जवाब देने वालों में से कई ने कैथोलिक धर्म को समझने में मदद के लिए प्रेयर ऐप्स, पॉडकास्ट, वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट जैसे ऑनलाइन सामग्रियों को श्रेय दिया। इस बीच कुछ प्रतिभागियों ने चर्च जाने में कई रुकावटें भी बताई। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि धर्म प्रांतों और पल्लियों को व्यक्तिगत सहयोग, विश्वास की खोज के लिए स्पष्ट रास्ते और कलीसिया में स्वागत के बाद निरंतर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखकों के अनुसार निष्कर्षों से पता चलता है कि आज बहुत से लोग कैथोलिक कलीसिया से मुख्य रूप से पारिवारिक परंपरा या विवाह के माध्यम से नहीं, बल्कि अर्थ, सच्चाई और ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते की व्यक्तिगत खोज के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। हांगकांग और मकाओ के धर्माध्यक्षों ने रोम की अपनी अदलिमीना प्रेरित यात्रा के दौरान आभार, मिशनरी नवीनीकरण और सिनोडलिटी के जीवित अनुभव के बारे में बात की और पोप लियो 14वें एवं वैटिकन के विभागों के साथ अपनी मुलाकात को विश्वव्यापी कलीसिया के साथ गहरे जुड़ाव का पल बताया। उनकी ये बातें ऐसे समय में आईं जब दोनों धर्म प्रांत अपनी खास वर्षगांठ मना रहे हैं। मकाओ धर्म प्रांत अपनी स्थापना के 450 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है, वहीं हांगकांग अपने धर्म प्रांत की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: सिर्फ ईश्वर का प्यार ही हमें सच्चा और पूर्ण आनंद दे सकता है। संत पापा लियो 14वें ने यह बात अमेरिका राज्य ओहायो में स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें स्टूबेनविले ग्रीष्मकालीन युवा सम्मेलन को भेजे गए एक वीडियो संदेश में कहा। संत पापा ने उनका अभिवादन कर यह भी याद दिलाया कि इस साल संत फ्रांसिस की मौत की 800वीं सालगिरह है। यह देखते हुए कि यह सम्मेलन स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय आयोजन कर रही है, संत पापा ने कहा कि उन्हें लगता है कि आज के युवाओं के लिए संत फ्रांसिस का जो संदेश हो सकता है उस पर सोचना सही होगा, खासकर सच्ची शांति और पूर्ण आनंद के बारे में। संत पापा ने कहा कि अगर कोई 13वीं सदी में असीसी की सड़कों पर संत फ्रांसिस से मिलता तो वे लोगों को शांत और प्यार भरी मुस्कान के साथ देखकर कहते, पाचे एबेने, अर्थात शांति और सब अच्छा हो। संत पापा ने युवाओं को खुद से पूछने के लिए कहा, क्या मैं उन लोगों के लिए सच्ची शांति चाहता हूँ जो मेरे संपर्क में आते हैं। संत पापा ने कहा कि संत फ्रांसिस ने जिस खुशी की बात कही थी वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या स्क्रीन के सामने घंटों बिताने से नहीं मिलती। ऐसी गतिविधियां अक्सर मूल्यवान समय बर्बाद करती हैं, जिसका उपयोग प्रार्थना, सच्ची दोस्ती, पारिवारिक जीवन, विश्वास निर्माण और अध्ययन या खेल के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर का प्रेम ही मानव हृदय को सच्चे आनंद से भर सकता है। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको किसी काम के लिए बुला रहे हैं, तो खुद को बंद ना करें और डर से पीछे ना हटें, बल्कि एक कदम आगे बढ़ें और प्रभु से कहें, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भेजिए। अंत में संत पापा ने प्रतिभागियों को एक सफल सम्मेलन की शुभकामनाएं देते हुए अपना संदेश समाप्त किया। और संत पापा लियो 14वें आज पाविया और संत अंजेलो लोदीजानो की प्रेरितिक दौरे पर हैं। वे दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए 2:45 बजे क्रोविनो में कुस रुग्बी फील्ड में उतरेंगे और तुरंत कार से नेशनल सेंटर फॉर ऑन्कोलॉजिकल हाइड्रोथेरेपी अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां संत पापा अस्पताल के मैनेजरों, मेडिकल स्टाफ और इलाज कर रहे कुछ बच्चों के साथ उनके माता पिता से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कार से सीएलडी ओरो में संत पेत्रुस महागिरजाघर जाएंगे। वहां वे संत अगुस्टीन के अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के बाद धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और परमानेंट डीकनों से मिलकर उन्हें अपना संदेश देंगे। फिर महागिरजाघर से निकलकर संत पापा विक्टोरिया चौक में स्थानीय विश्वासियों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। फिर शाम को संत अंजेलो लोदीजानो के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे संत अंतोनी एबोट और संत फ्रांसिस्का काब्रिनी महागिरजाघर में धन्य संस्कार की आराधना करेंगे और वहां उपस्थित विश्वासियों को संत पापा अपना संदेश देंगे। उसके बाद संत पापा 7:45 बजे संत अंजेलो लोदीजानो से वाटिकन के लिए उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे

0: के अत्यावश्यक है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे,

0: को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: के लिए। पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं।
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठे विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन सिटी दुनिया भर के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके कई कारण हैं। इसका एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास है। यह कातिकलिसिया का भी गढ़ है, जहां से संत पिता पूरी दुनिया के ख्रिस्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पोप के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई विभाग बनाए गए हैं। उन्हें विभागों में से एक है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधाम पीठे विभाग पर एक संक्षिप्त जानकारी, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।

विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग का मिशन है पोप एवं धर्माध्यक्षों की मदद करना, दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने में विश्वास एवं नैतिकता पर कार्तिक सिद्धांत की निष्ठा को बढ़ावा देना और विश्वास के भरोसे पर उसकी रक्षा करना। आज विश्वास के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वास की समझ को बढ़ाना, ताकि न सिर्फ गलतियों से बचा जा सके बल्कि कुछ ऐसे फैसलों से भी बचा जा सके जो आत्मा को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से सही होने के बावजूद वे विश्वास की समृद्धि को दुर्बल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस विभाग के मिशन को प्रकट करते हैं। विभाग में 3 सचिव हैं, महाधर्मदश आर्मांडो मत्तेओ, महाधर्मदश जॉन जोसेफ कैनेडी और महाधर्मदश चार्ल्स जूड सीक्लोना। कलीसिया के चरवाहों की जिम्मेदारी है कि वे यीशु ख्रिस्त द्वारा उन्हें सौंपी गई विश्वास की धरोहर को सुरक्षित रखें। इस काम को पूरा करने के लिए पूरे इतिहास में पोप ने कलीसिया के शासन को आसान बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है और कई विभाग बनाए हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ की शुरुआत इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। इसकी शुरुआत 1542 में हुई थी, जब संत पापा पॉल तृतीय ने विश्वास के मामलों की देखरेख के लिए 6 कार्डिनलों का एक कमीशन बनाया था। इसे पौत्र रोमन एवं सार्वभौमिक धर्म अधिकरण के नाम से जाना जाता है। शुरू में यह खासकर ख्रिस्तीय धर्म विरोधियों एवं मतभेदों के लिए एक अदालत के रूप में काम करता था। 1555 से पोप पॉल चौथे ने इसका दायरा काफी बढ़ाया और इसे अलग अलग तरह के नैतिक मुद्दों पर फैसला करने का अधिकार दिया। समय के साथ विभाग के इतिहास में भी बड़े बदलाव हुए। अब न्यायिक जांच का समय नहीं रहा, निर्देशिका अब मौजूद नहीं है। प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवंजेलियम के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ के नाम और आंतरिक ढांचे में बदलाव लाए गए। पोप फ्रांसिस ने इसका नाम विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग कर दिया। इस लंबी अवधि में इसका काम अवश्य बदला है, लेकिन प्रेरितों के सिद्धांत के प्रति निष्ठा की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग में 2 भाग हैं, धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग और अनुशासनात्मक विभाग। धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग विश्वास एवं नैतिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बचाने से जुड़े मामलों को देखता है। विवाह कार्यालय, जो कानून और असलियत दोनों तरह से विश्वास के खास अधिकार से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है, इसी विभाग का हिस्सा है। अनुशासनात्मक विभाग उन मामलों से निपटता है जो विभाग के लिए आरक्षित हैं और सुप्रीम प्रेरितिक अदालत के अधिकार क्षेत्र के जरिए विभाग द्वारा संभाले जाते हैं। विभाग के अंदर ही परमधम पीठ बाइबल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्री कमीशन बनाए गए हैं। हर एक अपने नियमों के हिसाब से काम करता है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अंदर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आयोग का निर्माण किया गया है। इसका काम पोप को सलाह एवं परामर्श देना है, साथ ही नाबालिगों एवं कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सही पहल का सुझाव भी देना है। यह आयोग खासकर दिशा निर्देश के जरिए सही रणनीतियां एवं तरीके बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नाबालिगों एवं कमजोर लोगों को यौन शोषण से बचाया जा सके और पुरोहितों तथा धर्म संघियों के संस्थानों एवं प्रेरितिक जीवन की सोसाइटी के सदस्यों के ऐसे व्यवहार का सही जवाब दिया जा सके। विश्वास को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने की सेवा हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जब कलीसिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। आज की कोशिशें उन कोशिशों में शामिल हो जाती हैं जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत को देखा है, जिससे सही धर्म सिद्धांत के लिए चिंता कहा जाता था, जो संत ऑफिसियो से पहले की बात है, जब विभाग का मुख्यालय है यह पहले से ही नए व्यवस्थान में मौजूद थी। कई काउंसिल एवं सीनेट इसके गवाह हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग विश्वास के खजाने की रक्षा करने की परंपरा को अपनाते हुए अपने मिशन को जारी रखी है एवं आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग की संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका टाइम पास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी पेशा लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकाल पाना कठिन हो जाता है। विशेषकर नौकरी कर रही महिलाएं अपने लिए समय निकाल नहीं पाती हैं, जिससे कि अपना मन पसंद काम कर सके। पर गृहिणी महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर चूल्हा चौका से फुर्सत पाकर कुछ समय अपने लिए जरूर निकाल लेती हैं। कुछ महिलाएं टीवी के सामने बैठकर सीरियल वगैरह देखती हैं या मोबाइल देखकर अपना टाइम पास करती हैं। कुछ महिलाएं अपने खाली समय का अधिकतम उपयोग उत्पादक गतिविधियों जैसे पढ़ना लिखना, कोई भाषा सीखना, कोई शौक पूरा करना, व्यायाम करना, कोई खेल खेलना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में करती हैं। पर कुछ अपने मोहल्ले से पार होने वाले फेरी वाले, चाहे वे सब्जी बेचने वाले हों या सलवार सूट साड़ियां बेचने वाले हो, उन्हीं के साथ अपना टाइम पास करती हैं। पर ये सोच नहीं पाती हैं कि वे इन बेचारों का वक्त जाया कर रही हैं। उनके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। आशा है आज की नाटिका ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति सम्मान की भावना लाए। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका टाइम पास।
1: अरे रीबा, आओ आओ ना यहाँ।
2: और क्या हो रहा है?
1: बस खाना बनाने की तैयारी है, और क्या, तुम्हारा काम हो गया?
2: हाँ, मैं तो सुबह नाश्ते के बाद ही एकदम से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
1: और भाई साहब का लंच?
2: वो तो मैं सुबह सबसे पहले वही तैयार करती हूँ।
1: एक तो ये आग बरसाती गर्मी और ऊपर से गैस के चूल्हे के पास खड़े रहना, बाप रे हालत ही खराब हो जाती है।
2: तो क्या शिखा, तुम पूरे दिन गैस के चूल्हे के पास ही खड़ी रहती हो?
1: नहीं भाई, सारा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ दिन में कुछ घंटे तो वहाँ निकल ही जाते हैं।
2: अब स्त्री होने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना, सो वो हम चुका ही रहे हैं, और क्या।
1: और ऐसे में पता है, जब संजीव ऑफिस चले जाते हैं तब काम के बाद टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है।
2: अरे शिखा, तब थोड़ा दिन में आराम ही कर लिया करो।
1: अरे मैं तो बहुत चाहती हूँ कि दिन में सो जाया करूँ, तो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, लेकिन संजीव दिन में सोने के लिए मना करते हैं।
2: क्यों?
1: उनका कहना है कि दिन में सोने से दो नुकसान होते हैं।
2: अच्छा, कौन कौन से?
1: एक तो यह नुकसान होता है कि फिर रात को नींद ही नहीं आती या फिर देर से आती है, और दूसरा नुकसान यह होता है कि दिन में सोने से मोटापा चढ़ता है।
2: भाई साहब का कहना ठीक है, तो फिर तुम अपना टाइम पास करने के लिए करती क्या हो?
1: ऐसे में टीवी देखने के सिवा और कोई क्या कर सकता है?
2: क्या बात करती हो शिखा, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहने से भी क्या वजन और मोटापा नहीं बढ़ता है?
1: हाँ ये भी एक मुश्किल है, वजन और मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन कोई करे भी तो क्या करे।
2: और फिर आजकल टीवी पर भी क्या सीरियल्स आते हैं, अरे ऐसे जो बनाने वाले हैं और उसमें काम करने वाले भी ना देखे।
1: बिल्कुल सच कहा तुमने रीमा,
2: और यही रवैया इन्होंने ऐतिहासिक धारावाहिकों के साथ भी कर रखा है।
1: क्या रवैया अपना रखा है?
2: अरे यही मनमानी करने वाला रवैया। अब ये धारावाहिक के निर्माता और निर्देशक ये सोचते हैं कि लोगों ने तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए तो वे ऐतिहासिक सीरियल्स को भी फिल्मी ढंग से बनाते हैं और दिखाते हैं, इतिहास की धज्जियां उड़ा देते हैं।
1: तुमने सही कहा रीमा, इतिहास में जो न हुआ है उसे भी ये फिल्मा कर दिखा देते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि बात कमाई की जो है।
1: लेकिन ये धारावाहिकों के निर्माता निर्देशक यह भी तो सोचते होंगे कि आजकल कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में जानती क्या है, इसलिए जैसा चाहो वैसा इतिहास दिखा दो।
2: लेकिन जो इतिहास जानते हैं और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते।
1: और रीमा, मजेदार बात तो ये है कि आज की यह कंप्यूटर वाली पीढ़ी ऐतिहासिक धारावाहिकों में भी रुचि नहीं लेती।
2: ये तो सही बात है। अच्छा शिखा, मैं चलती हूँ।
1: अरे बैठो भी रीमा, तुम्हारा घर कौन सा दूर है, दो घर छोड़कर ही तो तुम्हें अपने घर जाना है, और क्या।
2: और क्या क्या क्या मतलब?
1: मतलब ये कि कितना अच्छा टाइम पास हो रहा था तुम्हारे साथ।
2: अच्छा, तो मैं तुम्हें क्या टाइम पास मूंगफली लगती हूँ? तुम्हें भले ही कोई काम ना हो मगर मुझे तो काम रहते हैं।
1: फिर काम छोड़कर क्यों आती हूँ?
2: थोड़ा सा इंटरवल करने के लिए।
1: तो फिर अब कब आओगी?
2: जब इंटरवल यानी कि मध्यांतर की जरूरत होगी।
1: वाह भाई रीमा, तुम तो मेरी भी गुरु निकली।
2: अच्छा चलती हूँ।
1: आओ रीमा, आज फिर इंटरवल किया क्या तुमने?
2: अरे नहीं, मैं कॉलोनी के गेट पर मेडिकल शॉप तक जा रही थी। जरा
1: क्यों, तबीयत खराब है क्या?
2: अरे नहीं, कोहनी के पास जरा सा दर्द है तो मैंने सोचा कि कोई पेन किलर ऑइंटमेंट ही लगा लिया जाए, सो लेने जा रही हूँ।
1: तुम भी रीमा, सावधानी बरतने में जरा भी देर नहीं करती।
2: वो तो करना ही पड़ता है शिखा। और आज टाइम पास करने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी?
1: टाइम पास की व्यवस्था अभी अभी चली गई।
2: क्या मतलब?
1: सब्जी वाली थी, उसी से टाइम पास कर रही थी। अभी अभी तो गई है बिक्री का रोना रोकर।
2: सच तो है शिखा, अगर सब्जी बेचेगी नहीं तो खाएगी क्या?
1: सब्जी खाएगी और क्या।
3: सलवार सूट और साड़ियाँ दिखाऊं दीदी?
2: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है।
3: आप देख तो लो दीदी।
1: हाँ हाँ दिखाओ भैया।
2: अरे मगर शिखा, तुम क्यों जबरन ही?
1: अरे देखने में क्या बुराई है, क्यों भैया?
3: हाँ दीदी, देखने से ही आपको चीज का पता चलेगा ना।
1: सुना तुमने?
3: अगर जमे तो लेना, वरना हमें तो आगे बढ़ना ही है। हाँ ये देखिए, ये सलवार सूट है और ये साड़ियाँ हैं।
1: ये सलवार सूट खोलकर दिखाना।
3: ये वाला देखिए, बहुत बढ़िया कलर है, फिरोजी, आप पर खूब जमेगा दीदी।
2: कितने का है?
3: वैसे तो मैं 450 का बेच रहा हूँ, लेकिन आपको 400 में दे दूंगा।
1: हमारे लिए 400 क्यों?
3: अब आप भाव करेंगी, इसके लिए मैंने आपको पहले ही इसकी सही और एक ही भाव बता दिया है। बाजार में यही आपको 500 रुपये से कम में नहीं मिलेगा।
2: तो भैया फिर तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो?
3: अब दुकान वाले अपनी दुकान और नौकर आदि का खर्च जोड़कर बेचते हैं, और हम सिर्फ वाजिब कीमत पर ही बेचते हैं। हमारा भी फायदा और हमारे ग्राहक का भी फायदा। बोलिए दीदी, कौन सा दिखाऊं, क्या निकाल दूं?
2: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है, तुम जाओ।
1: अरे मगर देखने तो दो।
3: ठीक है दीदी, आपकी मर्जी।
1: साड़ियां तो देख लेने दो रीमा।
2: नहीं भैया, न ये लेगी न मैं, तुम कहीं और बेचो।
3: ठीक है दीदी।
1: तुम भी एक ही हो रीमा, मैं मानती हूँ कि तुम्हें ये पता है कि मैं फेरी वालों से कुछ नहीं खरीदती, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि मैं उसके सूट और साड़ियाँ देखकर अपना टाइम पास कर रही थी और तुमने उसे भगा दिया।
2: मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने उसे चलता कर दिया। तुम क्या समझती हो शिखा, यह फेरी वाला सुबह सुबह अपना सारा सामान लेकर क्या तुम्हारा या तुम जैसों का टाइम पास करने के लिए निकला है, कमाने नहीं? शिखा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय उसकी मजबूरी को समझा करो। अगर तुम उससे कुछ खरीद नहीं सकती हो तो तुम्हें उसका कीमती समय खराब करने का भी हक नहीं है।
1: शायद तुम ठीक कहती हो रीमा।
2: मैं शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कहती हूँ। तुम उससे अपना टाइम पास करने की बजाय यह तो सोच लेती कि ऐसा करके तुम उसको अपनी कमाई करने से रोक रही हो। जैसे तुम फालतू हो, क्या सब भी वैसे ही है?
1: अब मुझे अफसोस है रीमा कि मैं दूसरों के समय की कीमत नहीं समझ पा रही थी।
2: देखो शिखा, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी का कीमती समय बर्बाद करें। यदि कोई तुम्हारा समय खराब करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: तो ऐसा ही दूसरों के लिए भी सोचा करो। दूसरों के साथ वह कभी ना किया करो जो तुम दूसरों के द्वारा अपने लिए भी करना पसंद नहीं करती हो।
1: मैं तुमसे वादा करती हूँ रीमा, मैं आज से अभी से अपनी ये स्वार्थी और गंदी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। दूसरों के समय को भी कीमती समझकर उसको महत्व दिया करूंगी।
2: गुड शिखा, तभी तो तुम मानव और मानवता को आदर दे पाओगी।
1: हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो।
0: टाइम पास, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, माइकल होजेस और नलिनी गहलोत। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठे विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन सिटी दुनिया भर के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके कई कारण हैं। इसका एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली इतिहास है। यह कातिकलिसिया का भी गढ़ है, जहां से संत पिता पूरी दुनिया के ख्रिस्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पोप के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई विभाग बनाए गए हैं। उन्हें विभागों में से एक है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधाम पीठे विभाग पर एक संक्षिप्त जानकारी, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।

विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग का मिशन है पोप एवं धर्माध्यक्षों की मदद करना, दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने में विश्वास एवं नैतिकता पर कार्तिक सिद्धांत की निष्ठा को बढ़ावा देना और विश्वास के भरोसे पर उसकी रक्षा करना। आज विश्वास के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वास की समझ को बढ़ाना, ताकि न सिर्फ गलतियों से बचा जा सके बल्कि कुछ ऐसे फैसलों से भी बचा जा सके जो आत्मा को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से सही होने के बावजूद वे विश्वास की समृद्धि को दुर्बल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस विभाग के मिशन को प्रकट करते हैं। विभाग में 3 सचिव हैं, महाधर्माध्यक्ष आर्मांडो मत्तेओ, महाधर्माध्यक्ष जॉन जोसेफ कैनेडी और महाधर्माध्यक्ष चार्ल्स जूड सिक्लोना। कलीसिया के चरवाहों की जिम्मेदारी है कि वे यीशु ख्रिस्त द्वारा उन्हें सौंपी गई विश्वास की धरोहर को सुरक्षित रखें। इस काम को पूरा करने के लिए पूरे इतिहास में पोप ने कलीसिया के शासन को आसान बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है और कई विभाग बनाए हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ की शुरुआत इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। इसकी शुरुआत 1542 में हुई थी, जब संत पापा पॉल तृतीय ने विश्वास के मामलों की देखरेख के लिए 6 कार्डिनलों का एक कमीशन बनाया था। इसे पौत्र रोमन एवं सार्वभौमिक धर्म अधिकरण के नाम से जाना जाता है। शुरू में यह खासकर ख्रिस्तीय धर्म विरोधियों एवं मतभेदों के लिए एक अदालत के रूप में काम करता था। 1555 से पोप पॉल चौथे ने इसका दायरा काफी बढ़ाया और इसे अलग अलग तरह के नैतिक मुद्दों पर फैसला करने का अधिकार दिया। समय के साथ विभाग के इतिहास में भी बड़े बदलाव हुए। अब न्यायिक जांच का समय नहीं रहा, निर्देशिका अब मौजूद नहीं है। प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए स्थापित धर्म संघ के नाम और आंतरिक ढांचे में बदलाव लाए गए। पोप फ्रांसिस ने इसका नाम विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग कर दिया। इस लंबी अवधि में इसका काम अवश्य बदला है, लेकिन प्रेरितों के सिद्धांत के प्रति निष्ठा की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग में 2 भाग हैं, धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग और अनुशासनात्मक विभाग। धर्म सिद्धांत संबंधी विभाग विश्वास एवं नैतिकता के सिद्धांत को बढ़ावा देने और बचाने से जुड़े मामलों को देखता है। विवाह कार्यालय, जो कानून और असलियत दोनों तरह से विश्वास के खास अधिकार से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है, इसी विभाग का हिस्सा है। अनुशासनात्मक विभाग उन मामलों से निपटता है जो विभाग के लिए आरक्षित हैं और सुप्रीम प्रेरितिक अदालत के अधिकार क्षेत्र के जरिए विभाग द्वारा संभाले जाते हैं। विभाग के अंदर ही परमधम पीठ बाइबल कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय ई शास्त्री कमीशन बनाए गए हैं। हर एक अपने नियमों के हिसाब से काम करता है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अंदर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आयोग का निर्माण किया गया है। इसका काम पोप को सलाह एवं परामर्श देना है, साथ ही नाबालिगों एवं कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सही पहल का सुझाव भी देना है। यह आयोग खासकर दिशा निर्देश के जरिए सही रणनीतियां एवं तरीके बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नाबालिगों एवं कमजोर लोगों को यौन शोषण से बचाया जा सके और पुरोहितों तथा धर्म संघियों के संस्थानों एवं प्रेरितिक जीवन की सोसाइटी के सदस्यों के ऐसे व्यवहार का सही जवाब दिया जा सके। विश्वास को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने की सेवा हमारे समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका टाइम पास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी पेशा लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकाल पाना कठिन हो जाता है। विशेषकर नौकरी कर रही महिलाएं अपने लिए समय निकाल नहीं पाती हैं, जिससे कि अपना मन पसंद काम कर सके। पर गृहिणी महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर चूल्हा चौका से फुर्सत पाकर कुछ समय अपने लिए जरूर निकाल लेती हैं। कुछ महिलाएं टीवी के सामने बैठकर सीरियल वगैरह देखती हैं या मोबाइल देखकर अपना टाइम पास करती हैं। कुछ महिलाएं अपने खाली समय का अधिकतम उपयोग उत्पादक गतिविधियों जैसे पढ़ना लिखना, कोई भाषा सीखना, कोई शौक पूरा करना, व्यायाम करना, कोई खेल खेलना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में करती हैं। पर कुछ अपने मोहल्ले से पार होने वाले फेरी वाले, चाहे वे सब्जी बेचने वाले हों या सलवार सूट साड़ियां बेचने वाले हो, उन्हीं के साथ अपना टाइम पास करती हैं, पर ये सोच नहीं पाती हैं कि वे इन बेचारों का वक्त जाया कर रही हैं। उनके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है। आशा है आज की नाटिका ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति सम्मान की भावना लाए। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका टाइम पास।
1: अरे रीबा, आओ आओ ना यहाँ।
2: और क्या हो रहा है?
1: बस खाना बनाने की तैयारी है, और क्या, तुम्हारा काम हो गया?
2: हाँ, मैं तो सुबह नाश्ते के बाद ही एकदम से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
1: और भाई साहब का लंच?
2: वो तो मैं सुबह सबसे पहले वही तैयार करती हूँ।
1: एक तो ये आग बरसाती गर्मी और ऊपर से गैस के चूल्हे के पास खड़े रहना, बाप रे, हालत ही खराब हो जाती है।
2: तो क्या शिखा, तुम पूरे दिन गैस के चूल्हे के पास ही खड़ी रहती हो?
1: नहीं भाई, सारा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, दिन में कुछ घंटे तो वहाँ निकल ही जाते हैं।
2: अब स्त्री होने की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना, सो वो हम चुका ही रहे हैं, और क्या।
1: और ऐसे में पता है, जब संजीव ऑफिस चले जाते हैं तब काम के बाद टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है।
2: अरे शिखा, तब थोड़ा दिन में आराम ही कर लिया करो।
1: अरे मैं तो बहुत चाहती हूँ कि दिन में सो जाया करूँ, तो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, लेकिन संजीव दिन में सोने के लिए मना करते हैं।
2: क्यों?
1: उनका कहना है कि दिन में सोने से दो नुकसान होते हैं।
2: अच्छा, कौन कौन से?
1: एक तो यह नुकसान होता है कि फिर रात को नींद ही नहीं आती या फिर देर से आती है, और दूसरा नुकसान यह होता है कि दिन में सोने से मोटापा चढ़ता है।

0: है। भाई साहब का कहना ठीक है, तो फिर तुम अपना टाइम पास करने के लिए करती क्या हो?
1: ऐसे में टीवी देखने के सिवा और कोई क्या कर सकता है?
0: क्या बात करती हो शिखा, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहने से भी क्या वजन और मोटापा नहीं बढ़ता है?
1: हाँ, ये भी एक मुश्किल है। वजन और मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन कोई करे भी तो क्या करे।
0: और फिर आजकल टीवी पर भी क्या सीरियल्स आते हैं, अरे ऐसे जो बनाने वाले हैं और उसमें काम करने वाले भी ना देखे।
1: बिल्कुल सच कहा तुमने रीमा।
0: और यही रवैया इन्होंने ऐतिहासिक धारावाहिकों के साथ भी कर रखा है।
1: क्या रवैया अपना रखा है?
0: अरे यही मनमानी करने वाला रवैया। अब ये धारावाहिक के निर्माता और निर्देशक ये सोचते हैं कि लोगों ने तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए तो वे ऐतिहासिक सीरियल्स को भी फिल्मी ढंग से बनाते हैं और दिखाते हैं, इतिहास की धज्जियां उड़ा देते हैं।
1: तुमने सही कहा रीमा, इतिहास में जो न हुआ है उसे भी ये फिल्मा कर दिखा देते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि बात कमाई की जो है।
1: लेकिन ये धारावाहिकों के निर्माता निर्देशक यह भी तो सोचते होंगे कि आजकल कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में जानती क्या है, इसलिए जैसा चाहो वैसा इतिहास दिखा दो।
0: लेकिन जो इतिहास जानते हैं और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते।
1: और रीमा, मजेदार बात तो ये है कि आज की यह कंप्यूटर वाली पीढ़ी ऐतिहासिक धारावाहिकों में भी रुचि नहीं लेती।
0: ये तो सही बात है। अच्छा शिखा, मैं चलती हूँ।
1: अरे बैठो भी रीमा, तुम्हारा घर कौन सा दूर है? दो घर छोड़कर ही तो तुम्हें अपने घर जाना है, और क्या?
0: और क्या क्या क्या मतलब?
1: मतलब ये कि कितना अच्छा टाइम पास हो रहा था तुम्हारे साथ।
0: अच्छा, तो मैं तुम्हें क्या टाइम पास मूंगफली लगती हूँ? तुम्हें भले ही कोई काम ना हो, मगर मुझे तो काम रहते हैं,
1: फिर काम छोड़कर क्यों आती हो?
0: थोड़ा सा इंटरवल करने के लिए।
1: तो फिर अब कब आओगी?
0: जब इंटरवल यानी कि मध्यांतर की जरूरत होगी।
1: वाह भाई रीमा, तुम तो मेरी भी गुरु निकली।
0: अच्छा चलती हूँ।
1: आओ रीमा, आज फिर इंटरवल किया क्या तुमने?
0: अरे नहीं, मैं कॉलोनी के गेट पर मेडिकल शॉप तक जा रही थी जरा।
1: क्यों, तबीयत खराब है क्या?
0: अरे नहीं, कोहनी के पास जरा सा दर्द है, तो मैंने सोचा कि कोई पेन किलर ऑइंटमेंट ही लगा लिया जाए, सो लेने जा रही हूँ।
1: तुम भी रीमा, सावधानी बरतने में जरा भी देर नहीं करती।
0: वो तो करना ही पड़ता है शिखा। और आज टाइम पास करने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी?
1: टाइम पास की व्यवस्था अभी अभी चली गई।
0: क्या मतलब?
1: सब्जी वाली थी, उसी से टाइम पास कर रही थी। अभी अभी तो गई है बिक्री का रोना रोकर।
0: सच तो है शिखा, अगर सब्जी बेचेगी नहीं तो खाएगी क्या?
1: सब्जी खाएगी और क्या।
2: सलवार सूट और साड़ियां दिखाऊं दीदी?
0: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है।
2: आप देख तो लो दीदी।
1: हाँ, दिखाओ भैया।
0: अरे मगर शिखा, तुम क्यों जबरन ही?
1: अरे देखने में क्या बुराई है, क्यों भैया?
2: हाँ दीदी, देखने से ही आपको चीज का पता चलेगा ना,
1: सुना तुमने?
2: अगर जमे तो लेना, वरना हमें तो आगे बढ़ना ही है। हाँ ये देखिए, ये सलवार सूट है और ये साड़ियाँ हैं।
1: ये सलवार सूट खोलकर दिखाना।
2: ये वाला देखिए, बहुत बढ़िया कलर है, फिरोजी, आप पर खूब जमेगा दीदी।
0: कितने का है?
2: वैसे तो मैं 450 का बेच रहा हूँ, लेकिन आपको 400 में दे दूंगा।
1: हमारे लिए 400 क्यों?
2: अब आप भाव करेंगी, इसके लिए मैंने आपको पहले ही इसकी सही और एक ही भाव बता दिया है। बाजार में यही आपको 500 रुपये से कम में नहीं मिलेगा।
0: तो भैया, फिर तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो?
2: अब दुकान वाले अपनी दुकान और नौकर आदि का खर्च जोड़कर बेचते हैं, और हम सिर्फ वाजिब कीमत पर ही बेचते हैं। हमारा भी फायदा और हमारे ग्राहक का भी फायदा। बोलिए दीदी, कौन सा दिखाऊं, क्या निकाल दूं?
0: नहीं भैया, हमें नहीं लेना है, तुम जाओ।
1: अरे मगर देखने तो दो।
2: ठीक है दीदी, आपकी मर्जी।
1: साड़ियां तो देख लेने दो रीमा।
0: नहीं भैया, न ये लेगी न मैं, तुम कहीं और बेचो।
2: ठीक है दीदी।
1: तुम भी एक ही हो रीमा। मैं मानती हूं कि तुम्हें ये पता है कि मैं फेरी वालों से कुछ नहीं खरीदती, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि मैं उसके सूट और साड़ियां देखकर अपना टाइम पास कर रही थी और तुमने उसे भगा दिया।
0: मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने उसे चलता कर दिया। तुम क्या समझती हो शिखा, यह फेरी वाला सुबह सुबह अपना सारा सामान लेकर क्या तुम्हारा या तुम जैसों का टाइम पास करने के लिए निकला है? कमाने नहीं। शिखा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय उसकी मजबूरी को समझा करो। अगर तुम उससे कुछ खरीद नहीं सकती हो तो तुम्हें उसका कीमती समय खराब करने का भी हक नहीं है।
1: शायद तुम ठीक कहती हो रीमा।
0: मैं शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कहती हूँ। तुम उससे अपना टाइम पास करने की बजाय यह तो सोच लेती कि ऐसा करके तुम उसको अपनी कमाई करने से रोक रही हो। जैसे तुम फालतू हो, क्या सब भी वैसे ही है?
1: अब मुझे अफसोस है रीमा कि मैं दूसरों के समय की कीमत नहीं समझ पा रही थी।
0: देखो शिखा, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी का कीमती समय बर्बाद करें। यदि कोई तुम्हारा समय खराब करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: तो ऐसा ही दूसरों के लिए भी सोचा करो। दूसरों के साथ वह कभी ना किया करो जो तुम दूसरों के द्वारा अपने लिए भी करना पसंद नहीं करती हो।
1: मैं तुमसे वादा करती हूँ रीमा, मैं आज से, अभी से अपनी ये स्वार्थी और गंदी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। दूसरों के समय को भी कीमती समझकर उसको महत्व दिया करूंगी।
0: गुड शिखा, तभी तो तुम मानव और मानवता को आदर दे पाओगी।
1: हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो।
3: टाइम पास, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, माइकल होजेस और नलिनी गहलोत। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।